0: देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा पेंशन डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई है। 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत ज्यादा काम। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जल डुमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले के जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर News on AIR Official को सब्सक्राइब करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
6: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
7: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
8: आईएमडी ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केंदुझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है।

0: अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत डीएसवी निपुण को शामिल करने जा रही है।
1: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाओ अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञान वर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-2331-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR News हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68

0: श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए वे भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा कल संपन्न हो गई। श्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। ओडिशा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जिसके चलते बरगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार जन सुनवाई शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिले। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लड़ाक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान लगाया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: এতক্ষণ শুনলেন দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ। শ্রোতা বন্ধুরা, আপনারা অনুষ্ঠান শুনতে পাচ্ছেন 103.7 মেগাহার্জে FM প্রচার তরঙ্গে আকাশবাণী বিলোনিয়া কেন্দ্র থেকে। এখন শুনুন হিন্দি ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান গানে গানে। অনুষ্ঠানে আজকের প্রথম গানটি শোনাচ্ছি, ক্রান্তি ছবি থেকে। শিল্পীরা হলেন লতা মঙ্গেশকর, মান্না দে, শৈলেন্দ্র সিং, নিতিন মুকেশ এবং মহেন্দ্র কাপুর।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। श्री मोदी आज 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल 1 सितम्बर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा कल संपन्न हो गई। श्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। ओडिशा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जिसके चलते बरगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते हुए देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिजिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिजिस्तान की दो दिन की यात्रा पर कल राजधानी बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। श्री मोदी आज 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
0: इससे पहले उज़्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज़्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा ने दिखाया है कि उज़्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगाव लगातार बढ़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी प्रसारक के अनुसार इस हमले में ईरान के कई सैनिक और आम नागरिक मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ प्रणब मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति एक बेहतरीन प्रशासक और विद्वान थे। उनकी अमिट विरासत नए नेताओं के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने कल थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सरती खेरा तो रसिया मुंगल खाना बैके जसुआ हालाम बै रिसा जा रसिया मुंग ओ नाइ थकती भाई हाँ हाई सिंह वाट्सअप हाजिंग थानाई अब उन सैसंग सभी खाना चीनी और व्हाट्सएप नंबर 9402-1699-65

आधी हजार वो नरोनी खाना तो साग में निर्देश मुंग खाना लाने और सामुंग नो खाना नहीं कोई हर का सिनी बुकोक स्वर्ण माला बिनी खाना तो साग में निर्देश मुंग विश्व दिव्य जो मातिया भाई निर्देश

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री आज रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
2: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित है, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
3: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
0: निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता है। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। फुटबॉल में भारत की अंडर-20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर-20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये इसलिए गाना खास तौर से सुनाया गया, अमृता प्रीतम की याद को ये गाना समर्पित था। और अमृता जी की के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम श्रोताओं को दे दें कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें भारत के जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें अपनी पंजाबी कविता अज आखा वारिस शाहनू के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं का बहुत ही दुखद वर्णन है। और इसके अलावा इनके उपन्यास है 5 बरस लंबी सड़क, पिंजर, अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियां, और इनकी आत्मकथा रसीदी टिकट। मुझे लगता है हमारे श्रोताओं ने रसीदी टिकट तो जरूर पढ़ी होगी। कहानी संग्रह कहानियां जो कहानियां नहीं है कहानियों के आंगन में, और संस्मरण कच्चा आंगन, एक थे सारा, और बहुत सारी अन्य कृतियां भी हैं इनकी। और जब भी हम अमृता प्रीतम को पढ़ते हैं तो खास तौर से महिलाएं उन्हें उनसे प्रेरणा भी पाती हैं क्योंकि उनकी उनकी जो लेखनी थी उसमें पंजाब की मिट्टी की सौंधी गंध थी, उसमें प्रेम की आवाज थी, विरह भी था, विद्रोह भी था, तो ये सब कुछ एक महिला को परिपक्व और परिपूर्ण बनाता है। तो अमृता जी की याद को आज नमन कर रहे हैं
1: और अब सुनते हैं कथा सुधा।

0: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: छह आने का टिकट, इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना।
2: आप ही किशोर जी हैं जी। आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको छह कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई। अच्छा। और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया। कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
3: अच्छा, तो आप ही राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ हाँ हाँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया।
2: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृत वाणी मैं नहीं सुन पाता। लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा। जी? जी जी जी। इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
3: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं, लिहाजा अब श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
2: किशोर जी
3: जी,
2: आज तो आपकी छुट्टी है।
3: हाँ,
2: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
3: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है।
4: अरे भाई भीखू,
3: देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, और 2 6-6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया, ठीक है?
2: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट। मैं अकेले ही घूम लूंगा।
3: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रख कर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
2: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौट कर भोजन करूंगा।
3: जी ठीक है। मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था, और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला, और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था। यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

0: राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ? वो रात को घर क्यों नहीं लौटे? क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: कलकत्ता बहुत अच्छा नगर नहीं है और श्री राम खिलावन अपने जीवन का जहाज लेकर अकेले ही इस कलकत्ता नामक महासागर में निकल पड़े थे। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं बस के नीचे तो नहीं आ गए, या रास्ता तो नहीं भूल गए, या उन्हें कोई भगा तो नहीं ले गया। मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई। बिस्तर पर मैं करवटें बदलने लगा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि श्री राम खिलावन शरण के प्रति मुझमें इतनी अधिक ममता कैसे आ गई। एकाएक मैं चौंक उठा, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। मैं उठा, घड़ी पर मेरी नजर गई और उस समय 3 बजे थे। धड़कते दिल के साथ कांपते हुए हाथों से मैंने रिसीवर उठाया। हेलो,
2: भवानीपुर थाने से बोल रहा हूं। आपके यहां कोई राम खेलावन शरण प्रसाद तो नहीं ठहरे?
1: जी, खैरियत तो है, जिंदा है ना?
2: जी हाँ, है तो खैरियत से, लेकिन पिए हुए हैं। आध घंटा हुआ लाए गए हैं, आप उन्हें ले जाइए।
1: जी जी जी, रिसीवर मैंने रख दिया। अच्छा, तो हमारे श्री राम खिलावन शरण प्रसाद सिंह इतने पहुंचे हुए आदमी है, भाई मान गए। विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी होते हैं। ऐसा लग रहा है जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। अब ये राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह जैसे आदमी इतना पी सकते हैं कि थाने में बांध दिए जाए, तो हम जैसे न पीने वालों के तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। बहरहाल, अपने अतिथि को हवालात से लाना ही था और मैं हवालात पहुंचा। पूरे 5 रुपए देकर राम खिलावन शरण को मैंने छुड़ाया और उन्हें घर ले आया। घर आते ही श्री राम खिलावन शरण ने खींच कर एक गिलास पानी पिया और फिर मत्था पकड़कर बैठ गए। अब देखिए कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और वे मौन

0: बेबी ये मेरा दुर्भाग्य है, मुझ में अब जान नहीं है, इतना थका हुआ हूं, आज छे आने के टिकट ने मुझे मार डाला।
1: ये कैसे भला?
0: देखिए किशोर जी, आपने मुझे छे आने का टिकट दे ही दिया था।
1: हाँ,
0: जब मैं कलकत्ता घूमने निकला तो मैंने दो आने पैसे और साथ में ले लिए कि वक्त जरूरत काम आएंगे। अब मैं रवाना हुआ, ट्रॉम पर बैठ जाता था, जहां तक जाती थी वहां तक जाता था, और उसी ट्राम पर धर्मतल्ला वापस आता था। टॉलीगंज गया, बालीगंज गया, बहला गया, खिदरपुर गया, पार्क सर्कस गया, सियालदा, राजा बाजार, श्याम बाजार, बाग बाजार, डलहौजी, हाई कोर्ट गया, बहु बाजार गया, हैरिसन रोड गया, नीमतल्ला भी मैं घूम आया। तो शाम को कुछ थोड़ी सी भूख लगी थी, तो पास में दो आने पैसे थे तो नाश्ता डट कर किया। अब करीब 10 बजे मैं हैरिसन रोड और चितपुर रोड चौराहे पर पहुंचा, वहां उतरा मैं। मैंने हिसाब लगाया, छे आने के टिकट में मैं 1 रुपया 12 आने का घूम चुका था, और अब घर आने में 2 आने का और सफर करता तो इस प्रकार 1 रुपये 14 आने घूम चुकता, और छे आने में अपने हिसाब से मुझे 1.5 रुपया घूमना चाहिए था, और इसलिए मुझे संतोष करके उस समय लौट आना चाहिए था। लेकिन मालूम होता है कि उस समय मुझ पर शैतान सवार था, क्योंकि एक ख्याल आया कि खर्च 6 आने नहीं बल्कि 8 आने हुए, क्योंकि 2 आने का नाश्ता तो घूमने के सिलसिले में ही मैंने किया था, और 8 आने के हिसाब से मुझे 2 रुपए का घूमना चाहिए था। इधर यह ख्याल आया और उधर मुझे एक ट्राम दिखाई दी। जिस पर बेलगछिया लिखा था, मुझे ख्याल आया कि बेलगछिया अभी तक नहीं गया। मैं उस ट्राम में बैठ गया। बेलगछिया पहुंचकर मैं इस आशा से ट्राम में बैठा रहा कि ये वापस जाएगी, लेकिन एक आदमी ने आकर मुझसे कहा,
2: अब आप जाइए।
0: मैंने कहा मैं धर्मतल्ला जाऊंगा।
2: 11 बज गए हैं, घड़ी देख रहे हैं आप, अब यहां से कोई ट्राम नहीं जाएगी।
0: किशोर जी, मैं चौंक उठा। मैंने कहा कि क्या क्या क्या आप कोई ट्राम नहीं जाएगी हैं? नहीं जाएगी यहाँ से।
2: कह तो दिया नहीं जाएगी, अभी बस मिल जाएगी, चले जाओ।
0: मैं उठा वहां से, लेकिन मेरी जेब में 1 पैसा नहीं, मतलब बस पर कैसे आता। मैंने उस आदमी से पूछा, धर्मतल्ला यहाँ से कितनी दूर है?
2: होगा कोई 5 मील।
1: तो फिर आपने क्या किया?
0: किशोर जी, मैं पैदल धर्मतल्ले की तरफ रवाना हुआ। करीब 12:30 बजे मैं धर्मतल्ला पहुंचा, पूरी तरह थका हुआ था। धर्मतल्ला में कोई ट्रॉम नहीं मिली, इसलिए मुझे वहां से भी पैदल ही रगड़ना पड़ा। डेढ़ बजे के करीब मैं उस बड़े चौराहे पर पहुंचा। किशोर जी, आप जरा देखिए ना, 9 मील पैदल चलकर आया था, दिन भर खाना भी नहीं खाया था, प्यास जोरों से लगी थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें निकल पड़ती थी, और उसी समय एक पुलिस वाले ने बढ़कर मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मैं ऐसा बेकाबू और बेहोश था कि मेरे मुंह से शायद शब्द ही नहीं निकले, और अगर निकले भी होंगे तो टूटे फूटे, बिना मतलब के रहे होंगे। तब तक एक दूसरा पुलिस वाला आ गया, उसने पहले से पूछा कि मामला क्या है। दूसरे ने जवाब दिया कि मालूम होता है सर, दारू पिए हैं, पैर सीधा नहीं पड़ते, जबान नहीं खुलते, नशा में बेहोश है। तो दूसरे ने कहा कि तो फिर थाने ले चलो, कल सुबह होश आई जाए। उस समय मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन या तो मैं उन्हें नहीं समझा सका, या फिर वो मुझे नहीं समझ सके।
3: ओहो, ये बात है भिखू। अरे खाना ले आओ थाली में। भाई राम खिलावन जी, आपका अनुभव तो बहुत बुरा हुआ।

0: अब मेरी सलाह ये है कि आप कल सुबह अपने घर वापस चले जाएं। आप अच्छी साइट पर घर से नहीं चले थे?
1: जी हाँ किशोर जी, बात तो ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे मामा के ससुर के बहनोई जो टिकट कलेक्टर हैं और मुझे कलकत्ता मुफ्त में लाए थे,
0: अच्छा,
1: कह गए थे कि करीब 15 दिन में वापस लौटेंगे, तब साथ ले जाएंगे। 12 दिन तो हो गए हैं, 2-3 दिन में आने वाले हैं, तब तब चला जाऊंगा।
0: लेकिन इस घटना को हुए करीब 15 दिन हो गए हैं और मेरा घर अभी तक आबाद है, क्योंकि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के मामा के ससुर के बहनोई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।
2: छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, पुलिस कर्मी यूनुस खान, ट्राम का कर्मचारी दीपक केसावलेकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: विविध भारत के बाद।
1: अरे हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं जी। तो बस यही बताना है कि ये कार्यक्रम है सखी सहेली, जो आज पहली बार जिन्होंने ट्यून किया होगा उनके लिए जरूरी है बताना कि सखी सहेली कार्यक्रम। और अब हम अपने एक मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं जो एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, वो है शादी, दाम्पत्य। शादी दरअसल अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आती है। जीवन में यदि खुशियां हैं तो गम भी जिंदगी का हिस्सा है, ऐसे में जरूरी है कि हम इनमें संतुलन बनाकर चलें। लेकिन संतुलन बनाए कैसे? पति और पत्नी दरअसल होते एक सिक्के के दो पहलू हैं।
0: जी ममता जी।
1: दोनों में से किसी एक को कभी भी किसी मोड़ पर एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इसे अपनी परेशानी नहीं समझे बल्कि अपना कर्तव्य समझे और एक दूसरे के मन को समझें।
0: बिल्कुल। और ये जो रिश्ता है बहुत समझदारी से काम लेने का होता है, प्यार और विश्वास पर टिका होता है जो रिश्ता है पति पत्नी का। कभी भी इस इमारत को बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि नींव ही अगर मजबूत नहीं हुई तो जो इमारत है उसका गिरने का खतरा हमेशा ही बना रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो पति पत्नी के रिश्ते की इमारत है, इसके दो आधार स्तंभ होते हैं, प्यार और विश्वास। ये स्तंभ अगर कमजोर हो जाएंगे तो रिश्ता ज्यादा समय टिक ही नहीं पाएगा। और जो भी पति पत्नी है जिनके बीच ये दो बातें बहुत मजबूत हैं, इनके प्यार भी है और विश्वास भी है, उनका दाम्पत्य जीवन मान के चलिए कि हमेशा सुखमय रहता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि थोड़ी सी जो खट्टी मीठी बातें हैं वो तो जीवन का हिस्सा है, चलनी भी चाहिए।
1: बिल्कुल। देखिए ना, इसी तरह की कुछ बात हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखी है, लिखा इन्होंने कि कहते हैं कि जो धनुष बहुत मुश्किल से मुड़ते हैं वो चटक कर टूट जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी यही बात लागू होती है। दाम्पत्य जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है, जो देंगे वही आपके पास वापस आएगा। अगर एक दूसरे की खूबी को आप सराहते हैं तो कमियों को भी नजरअंदाज करना सीखिए। एक दूसरे की असहमति को समझे और ध्यान दें कि कहीं आप कंट्रोल फ्रीक तो नहीं होते जा रहे। एक दूसरे की कमियों और खूबियों को ही उसकी विशेषता समझे और हर कदम पर अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश हरगिज ना करें, वरना जीवन में सिवाय कला के और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ तुम समझो कुछ हम समझे, ये वाला सूत्र अपनाएं और दाम्पत्य की गाड़ी को दोनों पहियों पर चलने दें।
0: और ये जो इन्होंने लिखा है ना कि बदलने की कोशिश ना करें, जब आप किसी से अगाध प्रेम करते हैं तो आप उसको उसकी हर अच्छाई बुराई, उसकी कमियां खूबियों सबके साथ उसे अपनाते हैं और ये बहुत जरूरी है। कहीं आपको सिर्फ खूबियां देखकर किसी से प्रेम हुआ और बाद में कमियों के देखते अगर झगड़े में चीजें बदल जाती हैं तो ये सुखी दाम्पत्य जीवन की निशानी रही है, क्योंकि जहाँ खूबियां होती हैं वही कमियां सब में होती हैं। और एक चीज और है ममता जी, कि जो चीज आपको कमी लगती है वो किसी अन्य को खूबी लग सकती है और जो आपको खूबी लगे वो किसी अन्य को कमी लग सकती है। ये सबका देखने का समझने का अपना नजरिया होता है।
1: और दिन भर आरोप प्रत्यारोप भी दाम्पत्य जीवन को कमजोर बनाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो दोनों की जहां समझदारी होती है वहां लंबे समय तक दाम्पत्य टिकता है, जबकि कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो, बड़ी घटना ना हो। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि छह आने का टिकट भाग दो का इंतजार है, देख इन्होंने सुन लिया। और ये जो विषय है सुखी दाम्पत्य जीवन, मेरे कोमल दिल पर मरहम है और प्रहार भी, बहुत ही नाजुक विषय है, चर्चा का इंतजार है, सहन शक्ति की परीक्षा है। जब विवाहित जीवन 30 साल पूरा होता है तो साथ रहना भी है, एक दूसरे का के साथ दुश्मनी भी है, तो फिर भी कट ही जाएगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। दरअसल इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, शायद हो सकता है कि छोटी सी दरार पड़ जाती है दाम्पत्य जीवन में तो लोग उसको बहुत बड़ा भी बना लेते हैं कई बार। हाँ। और कई बार उस दरार को पाटने की कोशिश नहीं करती है तो टूटने की नौबत आ जाती है, तो कोशिश हो कि वो दरार पाट लिया जाए।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा ना कि कई बार मुश्किल वक्त में साथ देना होता है, तो बहुत सारी मुश्किलों का समय आता है जब पति पत्नी की भी एक बहुत कठिन परीक्षा होती है। अभी मान लीजिए आपके जो पतिदेव हैं, यानी किसी स्त्री के पति हैं, उनकी नौकरी छूट गई या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, और ये ऐसे समय में ना एक जीवन साथी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। हो सकता है कि अगर कोई महिला है वो कोई बिजनेस वुमेन है, यानी कि वो नौकरी करती है या कोई व्यापार करती है और उनके व्यापार में घाटा हो गया, तो चाहे वो पति है या पत्नी है, काम काज जब मंदा होता है या छूट जाता है तो घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं और बहुत सारी चीजें उथल पुथल होने लगती हैं। ऐसे में परिवार में लोगों का तनावग्रस्त होना जरूरी है, तो अगर आपके पति तनावग्रस्त हैं ऐसी चीजों को लेकर या पत्नी तनावग्रस्त है, तो दोनों एक दूसरे का साथ दें और प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो वो इस परिस्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। और ऐसे में यदि अगर ताने देंगे कि भाई तुम्हारी वजह से ही ये नुकसान हुआ, तुमने ऐसे ठीक से नहीं किया, तो ये चीजें है ना घर में चीजों को और क्लेश बना देती है।
1: मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे की बात को समझे, और जहां कोई एक परेशान है तो साथी को चाहिए कि वो आपकी उस परेशानी को दूर तो नहीं कर सकता है कोई एकदम से, लेकिन उस परेशानी में ये जताना बहुत जरूरी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो ये नौबत जो आपने ऑफिस की बात कही, चाहे वो हो, चाहे एक दूसरे में से कोई एक जोड़ा बीमार पड़ जाता है तब की समस्या है, या फिर कई कोई ऐसा हादसा हो जाता है इसका शिकार हो जाता है, तब तो निश्चित रूप से दोनों में से एक की जरूरत पड़ती है। बात जरूरत की नहीं है, जरूरत तो आप और भी तरीके से पूरी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत यहाँ पर बात यह है कि आप जिससे प्रेम करते हैं, दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से प्रेम की नींव होती है, मतलब प्रेम की बुनियाद पर ही टिका होता है, उस प्रेम को टूटने से कैसे बचाएं।
0: और जैसे आपने कहा ना कि चिंता ना करते हुए, अगर कोई भी एक शख्स ये कह देता है कि आप चिंता मत करो मैं हूं ना आपके साथ,
1: बिल्कुल,
0: तो ये जो शब्द है बहुत कहते हैं कि मजबूत बना देते हैं।
1: अब एक गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर लिखा है. एक श्रोता ने लिखा है कि पति पत्नी के आपसी विश्वास और साथ से दाम्पत्य जीवन भी सुखी और बच्चे भी सुखी होते हैं. बात यहाँ बच्चे की है तो ये बात बताना बहुत जरूरी है. कई बार दाम्पत्य जीवन को स्थायी रखने के लिए, टिकाऊ रखने के लिए बच्चे की भूमिका बहुत अहम होती है. कई बार बच्चे पति पत्नी के झगड़ों में आकर अच्छी बड़ी भूमिका निभाते हैं और झगड़े को खत्म भी करवा देते हैं. और कई बार ये माता पिता भी बच्चे के लिए अपने झगड़े खत्म कर देते हैं.
1: बहुत सही कहा आपने. और कई बार ऐसा भी होता है ना, जब मुश्किल का समय आता है, जैसे हम एक बात कर रहे थे, हमने एक सिर्फ कारोबार या नौकरी की बात की, ऐसे समय में पत्नियां एक तरीके से इस चीज को टूल की तरह इस्तेमाल करती है. भाई अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी. यानी कि बात बात पर आपको अपने, चाहे वो कोई छोटी सी नोकझोंक वाली बात है या कोई बड़ी समस्या आपके साथ में हुई है दाम्पत्य जीवन में,
0: अब उल्टा भी होने लगा है. हमने तो सुना है कि अब महिलाएं ये कहती हैं कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं तुमको घर से निकाल दूंगी.
1: तो भाई दोनों ही परिस्थितियां जो है वो ठीक नहीं है ना, तो पति को घर से बाहर निकालने वाली परिस्थिति ठीक है, ना ही मायके जाने वाली है. जो भी कोई समस्या आपके जीवन में आई है, जो दाम्पत्य जीवन के साथ में उलझनों को बढ़ा रही है, तो उसे सुलझाने का प्रयास करना है और दोनों को मिलजुल कर ही करना है. अगर किसी तरह से हमें पता लगता है कि जीवन साथी के साथ कोई स्वास्थ्य समस्या भी है, किसी रोग से वो ग्रसित हैं, तो ऐसे समय में भी धैर्य से काम लेना है. अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो पति है या पत्नी, तो उनका सहयोग अगर मिलेगा, आप ध्यान देंगे, तो वो जो भी आपका रोग है या आपकी समस्या है, उससे जल्दी स्वस्थ होकर, सुरक्षित होकर उभर कर बाहर आ सकते हैं.
0: बिल्कुल सही बात है. और देखिए कुछ मिलती जुलती बातें हमारे श्रोताओं की ओर से भी आ रही हैं. एक श्रोता ने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन की कुंजी खुशी है, जो पारस्परिक

0: मान अटूट विश्वास और खुले मन से संवाद रूपी की चेन में बंधी हुई है। अध्यात्म और ज्योतिष दृष्टि से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती को ध्यान में रखना चाहिए और इस मतलब अध्यात्म की ओर ले जाने की बात इन्होंने कही है। दरअसल आज जो भागदौड़ की जिंदगी है, ऐसे में आपको सबसे बड़ी कुंजी तो यही है कि आप एक दूसरे की बात को सुने और समझें, तो काफी कुछ मुश्किलें हल हो जाती हैं।
1: एक बड़ा छोटा सा बात छोटी सी कही है शोधा ने, लेकिन अहम बात है। उन्होंने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन कोई बना बनाया नियम नहीं, ये दोनों की भागीदारी की निरंतर प्रयासों और आपसी समझ के बिना किसी शर्त के बिना एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना से ही ये रिश्ता फलता और फूलता है।
0: चंचल जी, दरअसल ये बड़ी बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही नाजुक डोर होती है दाम्पत्य की, और इस नाजुक डोर को टूटने से बचाना ही सही होता है। हालांकि अब दौर बदल चुका है, जब हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं और स्त्री विमर्श की जब बात आती है तो यही होता है कि आपकी जब आपका मन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है तो आप एक दूसरे के साथ को छोड़ दें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है छोड़ना भी। जोड़ना जितना आसान होता है, छोड़ना उतना ही कठिन होता है। तो जब आप घर में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है और बहुत ज्यादा रोज रोज की मारपीट लड़ाई झगड़े जब एकदम अति हो जाती है तो निश्चित रूप से छोड़ना ही बेहतर होता है। लेकिन उसके लिए लड़कियों की बचपन से जो कंडीशनिंग होती है, लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी जो परवरिश होती है, उनको शुरू से ट्रेन करना बहुत जरूरी है। अब पिछला समय जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही सम्मान देना चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। अमूमन हमने देखा है कि घरों में लड़कियां कभी पिता के सहारे, कभी भाइयों के सहारे, फिर कभी दोस्तों मित्रों के सहारे ही अपना जीवन जीती हैं। तो जब पति पत्नी के बीच ऐसी नौबत आती है तो वो औरत ये सोचती है कि अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे। तो ये जो सहारे वाली बात मन में आती है, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो दौर बदल चुका है।
1: और कई बार जब त्रिकोण वाली परिस्थिति आती है ना, अगर आपका कोई साथी है, कोई मित्र है, पति की कोई अगर महिला मित्र है या पत्नी के कोई पुरुष मित्र है, तो उनको लेकर भी कई बार संदेह मन में इस तरह के आते हैं कि दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पे आ जाता है। और कई बार आजकल मोबाइल जो चीज है, हम एक दूसरे की अंदर झांकने के लिए उस मोबाइल को देखने की कोशिश करते हैं। अगर वहां कोई पासवर्ड है वो हमें ना मिले तो शक कहते ना पक्का हो जाता है, गहरा हो जाता है कि भाई पासवर्ड क्यों लगाया है आपने अपने मोबाइल पर, ऐसा क्या है जो हम नहीं देख सकते। तो ये चीजें भी कई बार परिस्थितियों को बहुत उलझा देती हैं, तो चीजों को समझ कर लेने वाली बात है।
0: और पासवर्ड तो अमूमन महिलाओं को मतलब महिलाओं का पासवर्ड पुरुष ही तय करते हैं, तो ये तो शायद भेद अब तक नहीं मिट पाया है। और ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो जिसे हम अनदेखा करके दाम्पत्य जीवन को संभाला जा सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक साथी की नाइट शिफ्ट होती है और दूसरा घर में है, मान लीजिए पति की नाइट शिफ्ट है और पत्नी घर में रहती है और घर की पूरी देखरेख कर रही है, उसके कंधे पर पूरी घर की जिम्मेदारी है, तो यहाँ भी टसल होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसको नींद की जरूरत होती है पति को और वो घर उतना मैनेज नहीं कर पाता है, तो भी मुश्किलें होती हैं। तो ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण टकराव होते हैं।
1: कुल मिला के कहना यही है कि हर समय, चाहे वो कठिन समय है चाहे आपके प्यार के पल हैं, एक दूसरे का हाथ हमेशा थामे रहे और अपनी जिंदगी की मुश्किल भरे दौर में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। जब आप खुशी एक साथ साझा करते हैं तो दुख को भी एक साथ साझा करें।
0: साथ छोड़ने की जब बात आती है तो बहुत जरूरी है कि स्वावलंबी होना महिलाओं का। महिलाएं अगर आत्मनिर्भर हैं और उनकी भी आजीविका है साथ में, तो जब ऐसी नौबत आती है तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ नहीं टूटता है। इसलिए बचपन से लड़की और लड़के को बराबर रखना चाहिए। और बात जब दाम्पत्य जीवन को संभालने की आती है तो यही हम सभी यही कहते हैं कि तोड़ने से बेहतर होता है जोड़ना। तो जितना हो सके जोड़िए एक दूसरे को। फिलहाल सुनिए ये गाना।

0: देखो ना तेरे मेरे मिलन की, ये रहना अभिमान फिल्म, ये भी तो दाम्पत्य जीवन पर ही आधारित
1: थी। किस तरह से थोड़े से अहम को लेकर दाम्पत्य जीवन टूट जाता है,
0: तो अहम का टकराव नहीं होना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, सुखी दाम्पत्य जीवन भई दाम्पत्य जीवन सुखमय ही नहीं अपितु आनंद युक्त होना चाहिए, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी लोगों के पास आनंद नहीं है, वो तेरे अपने उस बेगाने प्यार की तलाश और मोबाइल में कर रहे हैं, तो क्या किया जाए।
1: बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब कुछ खट्टे मीठे चटपटे जिस तरह के भी व्यंजन हैं इनकी बात हो जाए। और आज हम बात कर रहे हैं जिन व्यंजनों की, उसमें से एक है शुक्तो। ये एक पारंपरिक बंगाली मिश्रित सब्जी होती है जिसका स्वाद हल्का कड़वा और मलाईदार होता है। मुख्य सामग्री इसमें होती है करेला, कच्चा केला, बैंगन, सहजन की फलियां यानी कि ड्रमस्टिक्स, और राधुनी मसाला और दूध। इसे बंगाली दोपहर के भोजन की शुरुआत के समय मेन कोर्स के रूप में परोसा जाता है।
0: और एक व्यंजन इस तरह से बना है, सोनार मूंग दाल। ये भुनी हुई मूंग दाल से बनने वाला खास और शाही व्यंजन कहलाता है। इसमें दाल को पहले सूखा भून दिया जाता है जिससे इसमें एक बेहतरीन सोंधी खुशबू आती है। मुख्य सामग्री है सोना मूंग दाल, छोटे दाने वाली खास तरह की दाल, घी, काजू, किशमिश और हरी मिर्च। इसे बंगाली शादियों, त्योहारों और विशेष पूजा के अवसरों पर चावल के साथ परोसा जाता है।
1: इसी तरह से एक और रेसिपी हमारे पास आई है, ये मोचार घंटों, और ये बिहारी रसोई में भी बनाया जाता है बंगाली रसोई के साथ साथ। और जिनके भी घर में केले का पेड़ लगा हो वहां केले का गूंद गिरता है, उससे फूल बनता है। और ये इन्होंने रेसिपी बताई है कि उस फूल को निकाल कर सब्जी बनाई जाती है। थोड़ी सी मेहनत इसमें ज्यादा लगती है, लेकिन उसके भीतर पुंग केसर को निकालना पड़ता है और थोड़ा सा एक कसैला भी लगता है। इसे उबालकर बेसिक मसालों के साथ और बिना प्याज लहसुन के बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है। उबालने के बाद पिसे हुए चने या मसूर दाल में मिलाकर इसकी पकौड़ियों की तरह बनाकर इसके कोफ्ते भी बनाए जाते हैं।
0: पातिशाप्ता जानती है आप क्या होता है? नहीं जानती
1: जी, चलिए बताइए।
0: तो हमारी श्रोता ने ये लिख भेजा है, पातिशाप्ता ये एक तरह की पारंपरिक बंगाली मिठाई है और जो पतले चीले की तरह दिखती है। ये बेहद मीठी और मलाईदार होती है। मुख्य सामग्री इसमें लगती है मैदा, सूजी और चावल के आटे का घोल, जिसमें खोया कद्दूकस किया हुआ, मतलब मावा कद्दूकस करके नारियल और खजूर का गुड़ भरा जाता है। और इसे विशेष रूप से पौष संक्रांति के त्योहार पर सर्दियों में बनाया जाता है।
1: इसी तरह से एचौरा डालना, ये कच्चे कटहल की एक गाढ़ी और मसालेदार तरी वाली सब्जी होती है। इसका स्वाद और बनावट काफी हद तक जो मांसाहारी व्यंजन होते हैं उनकी तरह, मतलब देखने में ही लगता है। और इसमें मुख्य सामग्री होती है कच्चा कटहल, आलू, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, बंगाली पंचफूरन के साथ और गर्म मसाले के साथ इसे परोसा जाता है, और इसे शाही मटन भी कहते हैं।
0: और जब भी ये सब व्यंजन बनाए आप तो उस समय गाना जरूर सुने, वो भी विविध भारती से। फिलहाल ये गाना सुने।

0: अब जरा घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके निदान पर विशेषज्ञों से बातचीत। बालों की सुंदरता और इसके लचीलेपन को लेकर हम बड़े सजग रहते हैं और हर तरह से इनकी सुंदरता के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, फिर भी बालों को लेकर एक समय के बाद कुछ न कुछ समस्याएं देखने में आ ही जाती हैं। पिछले हफ्ते आज ही के दिन बालों की समस्या और देखभाल इस विषय को लेकर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत हमने आपको सुनवाई थी। आज इसी बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाते हैं।

0: अच्छा मुझे ये बताइए कि
1: कई पुरुषों में जो बालों की समस्या वो दो तरह से होती है, एक तो ये कि बाल पीछे की तरफ सरकते चले जाते हैं और ये माथा जो है वो बड़ा होता चला जाता है, दूसरा जिसको हम हिंदी में चांद निकलना कहते हैं, बेल्डनेस आती है बीच के हिस्से में, इन दोनों को रोका जा सकता है, इनका कोई उपाय है या ये जेनेटिक है और ये खानदानी चीजें हैं तो इसको टाला नहीं जा सकता?
2: एक भ्रम है लोगों में,
1: अच्छा,
2: कि जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट नहीं है, ये भ्रम। अगर मैं कहूं कि डायबिटीज भी जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट मत लीजिए, हो सकता है
1: नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाएगी।
2: तो जरूरी समझना है कि जेनेटिक बीमारियां जो होती है, साइंस ने इतना रिसर्च कर लिया कि उसमें ट्रीटमेंट लाई हुई है,
1: ओके,
2: और हमने ऐसे ट्रीटमेंट देखे हुए हैं कि जिसको रिस्पॉन्स काफी तरह से होता है, सिर्फ ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है, स्टेज वन स्टेज टू अलग अलग स्टेजेस में हमको ट्रीटमेंट देने होती है। तो चांद निकला है, शायद मेडिकल लाइन इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं गिरेगा क्योंकि बहुत बड़ा चांद है,
1: बहुत बड़ा चांद है सिर पर बहुत बड़ा चांद
2: तो उसके लिए है ट्रांस

0: जी जी जी ओके
1: उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है
0: उसकी भी बात हम आगे चलकर करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो क्या है उसकी बात आगे करते हैं तो ये टाला जा सकता है मतलब ये कि अगर कोई खानदानी मामला भी है जेनेटिक मामला भी है तो भी डॉक्टर के पास जाएं
1: या क्योंकि ट्रीटमेंट है रिसर्च ने ट्रीटमेंट निकाली है उस पर
0: जी
1: आपको लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन है
0: राइट बिल्कुल अच्छा ये जो चारों तरफ बड़े सजीले विज्ञापन आते हैं इसमें लहराते हुए बाल नजर आते हैं और ये शैम्पू लगाने से बाल चमकीले और वो कमाल कमाल के वर्ड्स का इस्तेमाल है जो हम यहाँ नहीं
1: तभी तो उससे विज्ञापन करते हैं विज्ञापन का काम ही है कि आप देख के थक हो जाओ
0: हाँ कि ये रिचनेस आती है फलाना अलग अलग टेक्निकल चीजें बताई जाती है कि ये विटामिन से भरपूर है और ये दादी नानी के नुस्खों से भरपूर है क्या कोई शैम्पू सचमुच में बालों का भला करता है या बिना सोचे समझे शैम्पू का इस्तेमाल करने का मतलब है कि उल्टा असर हो जाएगा
1: मैं उल्टा नहीं बता सकूंगी कि उल्टा असर होगा शैम्पू बहुत माइल्ड तरीके से स्लोली काम करता है इट्स अ सपोर्टिव जैसे कुछ शैम्पू जो है कि हमारे स्काल्प का इकोसिस्टम होता है हमारे स्काल्प पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे स्काल्प को हेल्दी बनाते हैं और हेयर को हेल्दी बनाते हैं जब गंजापन आता है तो इसका जो ये है सपोर्टिवनेस या इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाती है तो कुछ शैम्पू ये है इंग्रेडिएंट्स जो शैम्पू में होते हैं ये बालों के इकोसिस्टम को रेस्टोर करने का काम करते हैं स्लोली पर कुछ शैम्पू ऐसे अब कोई हार्श शैम्पू आजकल तो नहीं लगाता है अच्छे वाले शैम्पू ही लगाते हैं लेकिन वो शैम्पू में ये इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं है आपको नहीं पता चलेगा
0: जी जी
1: आपको डॉक्टर ही बता सकेगा कि ये शैम्पू में ये सिस्टम है अब ये लगाइए नॉर्मल लोगों को देखना है कि आपका हार्श शैम्पू नहीं लगा हार्श आप कैसे समझोगे तो जब झाग ज्यादा होता है हमारी मेंटेलिटी क्या है
0: झाग ज्यादा है तो अच्छा है
1: अच्छा है पर वो ज्यादा झाग वाला शैम्पू आपका स्किन का हेयर का मॉइस्चर निकाल लेता है पूरा
0: जो हर धारणा जो है लोकप्रिय धारणा उसमें आज आप भयानक तोड़फोड़ कर रही हैं जी ये क्योंकि हमें तो लगा कि वाह वाह का झाग वाला शैम्पू है
1: एडवर्टाइज देखोगे तो झाग वाला शैम्पू से भरपूर ऐसे और लोगों को लगता है कि लेना चाहिए
0: जी
1: तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा तुम्हारा मॉइस्चर
0: चला जाएगा जी ये बहुत महत्वपूर्ण है शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या हो और उसका सही तरीका क्या है
1: उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल समझना जरूरी है अगर आप रोज जिम जा रहे हो या पसीना आ रहा है तो आपको रोज करना चाहिए पर करने के टाइम पर आपको ध्यान देना है कि वो शैम्पू माइल्ड तरीके का हो
0: ये ऐसा झाग वाला नहीं
1: झाग वाला नहीं चाहिए अदरवाइज महिलाओं में 2 से 3 बार पुरुषों में डेली या 3 से 4 बार अभी जिसको स्केलिंग है डैंड्रफ है उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है अलग टाइप का शैम्पू लेना होता है और जब भी आप शैम्पू करें और आपके बाल ड्राई होते हैं तो पहले दिन या 1 घंटा पहले आपको ऑयल लगाना जरूरी है कोकोनट ऑयल से क्या होता है कोकोनट ऑयल का एक कैपेसिटी है जो हेयर के अंदर के सेल तक जाके रुकता है तो इससे उसमें से का मॉइस्चर है ना वो शैम्पू के टाइम पर नहीं निकलता जल्दी से तो ड्राई नहीं होते हैं
0: बहुत महत्वपूर्ण बात है
1: और फिर भी आपको लगता है कि ड्राई हो रहे हैं तो कंडीशनर लगाना चाहिए भले ही आप 2 मिनट के लगाओ 5 मिनट के लगाओ लेकिन कंडीशनर लगाइए पहले वाला कंडीशनर मतलब तुम्हारा ऑयल जो कोकोनट ऑयल है बाद में वाला कंडीशनर मतलब अभी मार्केट में अच्छे वाले कंडीशनर आते हैं इसके बावजूद भी आपके बहुत ड्राई है लस्टरलेस है तो आपको देखना चाहिए उसको बोलते हैं हेयर शार्प डिसऑर्डर्स मतलब आपकी शार्प की क्वालिटी कुछ खराब हो रही है वो भी जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक भी होता है तो वो एक एनालिसिस करके लेना जरूरी होता है
0: जी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं

0: प्यार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं
1: डॉक्टर साहब, और गाने भी जो है वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि शैम्पू की फ्रीक्वेंसी की सारी बातें हो गई कि किस तरह से शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बड़ी सूझबूझ के साथ नारियल के तेल का जिक्र किया। आज के लड़के या कुछ हद तक लड़कियां भी बालों में तेल लगाने से परहेज करते हैं क्योंकि रोज बाहर जाना है वो गंदा दिखेगा, बाल चिपचिपे दिखेंगे। ये तेल लगाना कितना जरूरी है?
2: तो मैं कहूंगी तेल लगा के बाहर नहीं जाइए, रात को तेल लगाइए, सुबह आपको शैम्पू करना है तो जो दिन शैम्पू करना है उसके पहले रात को तेल लगा लीजिए।
0: जी,
2: तेल लगाने का और एक फायदा होता है, ये रिसर्च बोलती है। और ये जब मैं सोचती हूँ कि हमारे टाइम पर हम लोग तेल लगा के ही शैम्पू करते थे बचपन में,
0: बिल्कुल
2: एक क्या बोलते हैं, माहौल रहता था, रूल था कि मम्मी आती थी अच्छे से तेल चंपी करती थी और दूसरे दिन हम शैम्पू करते थे। रिसर्च ने बताया है कि कुछ तेल ऐसे हैं जिसकी इकोसिस्टम मेंटेन होती है, जो मैंने बोला है इकोसिस्टम,
0: हाँ जी,
2: वो तेल से मेंटेन रहती है।
0: तो देखिए कि ये हमारी पुरानी
2: परंपरा
0: कितनी
2: साइंटिफिक, तभी साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। तो अभी क्या हुआ कि पेरेंट्स वो टाइम के चले गए, अभी मॉडर्न पेरेंट्स आए हैं तो उनको ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है।
0: जी,
2: मैं तो कहती हूँ तेल लगाना जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है,
2: इकोसिस्टम के हिसाब से। अगर आपको बालों के इकोसिस्टम मेंटेन करने, इस सिंपल एक एग्जांपल देते हो, आप बालों को मॉइस्चराइजर, हाथों को मॉइस्चराइजर लगाते हो, क्यों लगाते हो?
0: रूखे हो जाते हैं।
2: स्काल्प को हम मॉइस्चराइजर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सीबम रहता है, अपने बालों में एक सीबम जो बालों में बहुत ज्यादा रहता है, सीबेसिस ग्लैंड बहुत रहते हैं, तो मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए। लेकिन ओवर पीरियड जब हम धूप में जाते हैं, हमारी जब उम्र होती है तो इसका प्रमाण भी सीबम सिक्रीशन का कम हो जाता है। तो हम रोज नहीं लगा रहे ऑयल, पर बॉडी में हम रोज लगाते हैं स्नान करने के बाद, ड्राई होते हैं, तो कभी कभी सर के बालों को, स्किन को तेल लगाना जरूरी है।
0: ये फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसका भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए।
2: हफ्ते में 2 से 3 बार।
0: ओ,
2: आप शैम्पू तो हफ्ते में 2 से 3 बार कर ही रहे हो। अब बहुत चिपचिप नहीं, थोड़ा सा जैसे आप मॉइस्चराइजर बॉडी को लगा रहे वैसा समझ के लगाइए तेल।
0: जो लोग नहीं लगाते हैं बालों में तेल, चाहे वो अपनी मान्यता की वजह से या फैशन की वजह से या लापरवाही की वजह से, उनके बालों पर क्या असर पड़ता है?
2: देखो, सिर्फ बालों से नहीं, ये बालों का जो इकोसिस्टम सपोर्टिव सिस्टम है। आपका मेन कॉज क्या है? अगर हेयर फॉल का मेन कॉज अलग है, अगर मैंने उसको नहीं ठीक किया तो सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं होने वाला।
0: जी, वो एक पूरा स्कैल्प और पूरा इकोसिस्टम,
2: ये होलिस्टिक अप्रोच करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
2: दूसरा मैं कह रही थी कि जो आपने देखेंगे ना, जो तेल लगाते हैं, रेगुलर तेल लगाते हैं, उनका शायद बाल झड़ने का प्रमाण जल्दी ठीक हो जाता है।
0: जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर बोल दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आए।
2: जो बालों में तेल लगाते, बालों में मतलब स्किन पर, जब बालों में हम तेल लगाते हैं वो कंडीशनिंग करके होता है, सर के स्किन को तेल लगाते हैं वो इकोसिस्टम इंप्रूव करने का काम करता है,
0: उनके बाल सही सलामत रहते हैं,
2: रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: जी बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर एक गाना आएगा और वो सावन की घटा फिल्म का गाना है, जुल्फों को हटा दे चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे। सुनते हैं ये गाना।

0: हरा, क्या क्या रंग बालों के कर लेते, वो कितना नुकसान दे। अब इस पर आ जाते हैं। पहले
1: आपका बैंक बैलेंस है और आपको खर्चा करना है,
0: हाँ।
1: कितना खर्चा करना चाहते हो ताकि आपका बैंक बैलेंस थोड़ा नेगेटिव में जाए, ये आपको डिसाइड करना है।
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है ये।
1: मतलब ये जो कलरिंग करते हैं बहुत, जो डार्क कलर्स अलग तरह का करते हैं,
0: पहले ये नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत ही वो जो बम्बैया शब्द है अतरंगी कलर्स,
1: ये बट ये आपका फैशन है
0: जी,
1: पर ये फैशन आएगा आपको नुकसान के साथ आएगा,
0: राइट।
1: आपको चलने वाला है?
0: नहीं
1: नहीं, आप बोल रहे नहीं, पर किसी को चलने वाला भी हो सकता है
0: जी।
1: आप सोचे कि नुकसान के साथ आने वाला है तो ये बैगेज के साथ आएगा, आप तैयार है उसके लिए, गो अहेड।
0: बहुत सही बात है। मतलब ये जो लोग तरह तरह के बालों में कलर्स लगाते हैं, चाहे वो गोल्डन कलर्स हों,
1: हाँ, लेकिन क्या होता है इन लोगों को बहुत ऐसे एक मन में इच्छा होती है, बहुत सारे
0: ट्रेंड के साथ चलना,
1: ट्रेंड के साथ चलना, तो मैं ट्रेंड के साथ नहीं चलूंगी तो कैसा लगेगा, मैं करके देखती हूँ, ठीक है, एक बार करके देखो, दो बार करके देखो, आप डिसाइड करो कि आपको डैमेज कितना हो रहा है, देन यू टेक अ कॉल कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम ऐसे जनरलाइज मैं स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि नहीं करो,
0: लेकिन करना आपको है, देखना है कि कितना नुकसान हो रहा है,
1: हो रहा है नुकसान, आप वो नुकसान सहन करने को तैयार है, ठीक है, फिर आगे बढ़िए
0: जी। और एक उम्र के बाद, आजकल तो एक उम्र के पहले भी बाल सफेद हो जाते हैं और लोगों को जरूरत पड़ती है बाल काले करने की, और उसमें केमिकल कलर्स का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, या आप जाके प्रोफेशनल से लगवाते हैं, और दूसरा तरीका है मेहंदी लगाने का। इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखिए।
1: जो ग्रे होते हैं, जिनके ग्रेइंग जो शुरू होती है 20 साल के पहले, उसको जेनेटिक बैकग्राउंड है
0: जी, उसको रोक सकते हैं,
1: कम कर सकते हैं, कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ तरह के लोशंस है मार्केट में जिसके रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं, पर इसका 100% नहीं उपयोग होता है, 40-50% इम्प्रूवमेंट होता है लोगों में। और जो उम्र के हिसाब से ग्रे बाल होते हैं उसको रिवर्स करने का अभी साइंस ने कोई तोड़ नहीं डाला है उसमें, तो उसको आपको कलर करना होता है। अभी कलर कौन सा करें, कलर में बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंपनी का जिससे ड्राई नहीं होते हैं और जिसकी एलर्जी नहीं है, कुछ लोगों को डाई की एलर्जी भी होती है तो उनको वो कलर नहीं सूट होता है, फिर बगैर वो इनग्रे पीपीडी फ्री वाला कलर लेना पड़ता है।
0: आजकल वो एक सेंटेंस बहुत चलता है ना, अमोनिया वाला कलर, और
1: अमोनिया से फ्री थोड़ा डैमेज कम हो जाता है
0: जी,
1: क्योंकि ये तो हेयर डाई है, अमोनिया रहेगा तो थोड़े ड्राई होते हैं बाल, डैमेज मतलब ड्राई होते हैं, तो अमोनिया फ्री से ड्राइनेस कम हो जाता है। जैसे ही आप, वैसे ही जैसे आपका कलर डाई भी लाइट कलर का होगा, गोल्डन होगा, तो ड्राई बहुत ज्यादा होते हैं। मेहंदी लोग इसके लिए लगाते हैं कि वो ये कलर डाई से डरते हैं, पर अगर आप देखेंगे कलर डाई इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, साइड इफेक्ट्स वाले होने वाले प्रमाण बहुत कम है।
0: बिल्कुल,
1: पर मेहंदी लगाने से ड्राइनेस काफी ज्यादा आता है बालों में,
0: तो इसमें एक फैसला करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी चीज ठीक है।
1: अमोनिया फ्री अच्छे कंपनी का डाई
0: जी,
1: उसके साथ आपको कंडीशनर करिए तो आपके ड्राई नहीं होंगे बाल। तो ये जो डाई करना है कलर डाई, अगर आप ग्रे के लिए करना चाहते हैं तो नुकसान नहीं होता है, हम सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, पर आप बहुत अलग तरह के मतलब रेड वाले कलर करोगे तो आपके बाल ड्राई होते रहेंगे, फिर वो ड्राई बालों को ठीक करने के लिए आप दूसरी प्रोसेस करोगे, तीसरी प्रोसेस करेंगे, तो ये तो विशेष साइकिल चालू रहेगी।
0: बिल्कुल, तो इसलिए समझदारी से चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है। यहाँ पर एक गाने की बारी है।

0: ये जो हेयर कलर्स हैं, क्या ये कोई बड़ा नुकसान अचानक कर सकते हैं कि बालों का एकदम बड़ा पैच अचानक गायब हो गया?
1: अगर आपका कलर लो क्वालिटी का है, उसमें इरिटेशन बहुत ज्यादा है, रिएक्शन हो गई आपको, यस, कुछ लोगों को रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये रिएक्शन वाली बात हुई तो डेफिनेटली यस,
0: तो इसको लेकर सावधानी की जरूरत है। एक बहुत बड़ी और कॉमन समस्या हर उम्र के लोगों में है और वो डैंड्रफ की समस्या है, जिसको लेकर भी विज्ञापन इंडस्ट्री बहुत सक्रिय है। डैंड्रफ से जुड़ी भ्रांतियां दूर कीजिए।
1: डैंड्रफ के साथ बहुत लोगों को एक स्टिकी टाइप का डैंड्रफ होता है, किसी लोगों को फ्लेकी टाइप का डैंड्रफ होता
0: गिरता रहता है।
1: लोगों में धारणा ऐसी है कि डैंड्रफ हुआ तो मुंह से हुए, ये गलत है। वो डैंड्रफ फेस पर आता है और फेस में वो अलग है, मुंह से का पैथोजेनेसिस बिल्कुल अलग है और डैंड्रफ का अलग है। डैंड्रफ के प्रकार जो होते हैं उसमें आपको समझना चाहिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होती है। यहां मैं सावधान करना चाहूंगी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब हम स्कोप के नीचे देखते हैं, बहुत सारे आधे लोगों को स्कैल्प सोरेसिस होता है। ये स्कैल्प सोरेसिस अलग बीमारी है
0: जी,
1: या जैसे हमारे बॉडी में सोरेसिस है वैसे एक स्कैल्प सोरेसिस एक प्रकार है,
0: उसके बारे में भी बता दीजिए।
1: तो ये स्कैल्प सोरेसिस हमको वो टेस्ट करने मतलब ट्राइकोस्कोप से समझ में आती है कि स्कैल्प सोरेसिस है या डैंड्रफ है। जो जो लोगों को डैंड्रफ करके डायग्नोस हुआ, 50% लोगों में स्कैल्प सोरेसिस निकला, इसका हमने रिसर्च किया हुआ है। तो स्कैल्प सोरेसिस के ट्रीटमेंट अलग है, हालांकि उसको क्योर नहीं है बट हम बिल्कुल कंट्रोल रख सकते हैं दवा से। दवा भी बहुत सिंपल है, बहुत हार्श दवा नहीं है, बट रिकरेंस इज वेरी कॉमन, तो लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, तो उसको कुछ चीजें ऐसी होती है कि रिकरेंट होती रहती है। कंट्रोल करना हमारे, जैसे हम डायबिटीज की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मुझे खाना नहीं है, कितने सालों तक मैं खाऊं?
0: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता।
1: तो कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए
0: जी। कई शैम्पूज इस तरह के विज्ञापन के साथ आते हैं कि वो डैंड्रफ के दुश्मन है, क्या ऐसा होता है?
1: शैम्पू डैंड्रफ के दुश्मन है कि शैम्पू डैंड्रफ के लिए है?
0: बताइए, ये शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं या नहीं हटाते हैं?
1: नहीं, कुछ शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं, और बहुत बार कैसे होता है कि सेम तरीका का शैम्पू जब आप इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो शैम्पू काम करना बंद हो जाता है।
0: अच्छा,
1: आपको लगता है कि अब ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट को कभी कभी ये मलेशिया फरफर करके एक फंगा होता है वो काम नहीं करते, तो दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ शैम्पू आप ले सकते हो, बट पर भी आपके नहीं जा रहे तो आपको देखना है कि आपका स्कैल्प सोरेसिस नहीं है ना। आपको नहीं पता चलेगा, दोनों स्कैल्प सोरेसिस और डैंड्रफ बहुत दिखने में सेम दिखते हैं। इससे अच्छा मैं मैसेज देना चाहूंगी कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपने ट्राई किया है
0: जी,
1: आपको फर्क नहीं हो रहा है, तो आपको स्कैल्प सोरेसिस है या नहीं है इसकी जान लीजिए।
0: ओके, उसको आपको टेस्ट करवा लेना।
1: हाँ।
0: है जी, ये एक थंब रूल
1: मतलब लोग ऐसे बहुत सालों तक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, एक छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और वह परेशान हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपको स्कैल्प सोरेसिस है कि नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: ये मैसेज जाना चाहिए,
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं और उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
1: बहुत बड़ा मुद्दा।
0: यहाँ पिया का घर फिल्म का गाना आ रहा है, ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है ना।

बहनें बड़ी प्यारी होती है ना, खेलती है हवाओं में, खिलती है घटाओं में, ये बहन

0: ये क्या है?
1: हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी चीजें खरीदी थी। मैंने रफली हिसाब लगाया

0: हेलो
1: राहुल, तुम तैयार क्यों नहीं हुए? सोनाली की पार्टी में जाना है ना. कम ऑन, गेट रेडी,
0: जल्दी तैयार हो जा. चल चल चल चल राहुल.
2: नहीं यार, मुझे कहीं नहीं जाना. अच्छा ठीक है,

0: शुभांगी, I'm so excited for you. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी हो रही है.
1: Are you sure कि तुम इससे शादी करना चाहती हो?
0: Yes, I'm sure.
1: तुमने इसे ठीक से देखा है?
2: हाँ, देखो.
0: क्या? वैसे तो शादियों में दुल्हन रोती है, पर इस शादी में मैं रोऊंगी अपनी रूममेट और रूम की जुदाई पर.
3: देखिए राधिका जी, कुछ जाता है तो कुछ पास आता भी है. तो पेश करते हैं आपके लिए आपका नया रूममेट, राहुल राहुल राहुल राहुल राहुल.
0: वाओ राधिका, दैट्स अ ग्रेट आइडिया. व्हाई डोंट यू मूव इन विद राहुल?
1: इट इज अ गुड आइडिया.

0: curious about AI?
1: This is the
2: श्राप वाली
3: भाई, ये तो हर जगह प्रकट हो रही है। श्राप है या मैनिफेस्टेशन चल रहा है? अब